तू भिखियां दे विच अपने आप नू क्यों खोब लिया, क्यों तू एक घड़ी भी विकारां तू अपने आप

सारे सुख देने वाला एक कोई और आम है, कोई और नहीं। ओदा सिमरन कर तेरी गत हो जाएगी।

मेरा पुत्र वड्डा हो गया, आज एक साल का हो गया। ओदा जन्मदिन मनांदी पुत्र वड्डा हो गया, पर कबीर साहब कहंदे ने इतनाक ना जाने, जे दिन दिन आवद कटक है। ए नहीं सोचदी कि जे मेरा पुत्र 50 साल दी उम्र लिखा के लाया सी, आज एक साल कट गया है, वो वड्डा नहीं हो रहा, वो ते मौत वाल वध रहे है।

ना दुख दा दुख, ना जिदे विच लोभ है ना अहंकार है। ऐ भाई ओहो इंसान भगवान दी मूरत सम

निंदिया की थी तामी कोई परवाह नहीं, जिदे वास्ते सोना ते लोहा एक समान है, पाई ओ इंसान मुक्ति नु प्राप्त समझे।

एक आदमी आया, उत्ते शाल दे गया। ठंड का वेला सी, कीमती शाल मिलया पर कोई खुशी नहीं। एक आदमी आया,

प्रसादे का थाल अगे रखिया, खान लगे ने। एक होर आदमी आया, वो अगों थाल चुक के ते आप खा गया। भोजन आया,

हर रोज दिन रात माया वास्ते इंसान भटकता फिरता है, पर करोड़ों दे विच कोई विरला इंसान है जिहड़ा परमेश्वर दा सिमरन

पानी दा पतीला रख दी, पानी गर्म हो जाए ते आग दे तेज बलन दे नाल पानी उबल दे ते बुलबुले उठ दे ने पानी दे। गुरु साहब जी कहंदे ने भाई जिस तरह ओ बुलबुले उठदे ने पानी दे ते खत्म हो जांदे ने, इस तरह ही इस संसार की रचना भी इस तरह की।

दुखी हो गया ते सारिया ने साथ छड़ दिता, पर याद रख सारे साथ साथ छड़ जांदे नहीं, पर एक परमेश्वर जिहड़ा है वो हमेशा सहाई रहिंदा है।

बचपन जवानी बुढ़ेपा तेन अवस्था समझ के भजन तू बगैर तीनों अवस्था एवं गवा ली हैं, भजन तू बगैर बिरथियां नहीं।

झूठे मान क्यों कर दे जगत नु सुपने दी तरह समझ कुछ भी तेरा नहीं गुरु नानक ए गल सच्ची कहंदे करदा मालिक सारी उम्र तिया पुत्रा दी पालना करदे पाप करके कमाई करदे दिन रात भजो फिरदे माया वास्ते जदू मरदे वेड़े विच पिया हुंदे फटे ते पांदे ने जिन्ना तिया पुत्रा दी पालना की थी फिर ओही कहंदे ने एदियां जेबां फोड़ लो घर दियां चाबियां ता नहीं जेब विच किधरे माया वाला बटुआ ते नहीं पाया जे पाया है ता कढ लिया हाथ देख लो कोई सोने दी अंगूठी ता नहीं पाई कड़ी ता नहीं पाई जे पाई तो वो भी ला ली जिस चंगा सूट पाया है ता वो भी ला लेंदे ने घर दा मालिक एक कफन पा के ओही तिया पुत्र लैके तुर पैंदे ने शमशान घाट लै गए जे कफन चंगा है ते कई बारी साड़न वाला ओ भी ला लैंदा है माड़ा जा कफन रह गया ते फिर अग कहंदी भाई आया ते नंगा सी ये कफन किथे लै चले है ओ कफन अग साम लैंदी शरीर भी नाल नहीं जांदा ते गुरु साहब जी कहंदे ने भाई तू जिन्ना वास्ते पाप करदा है किसे ने भी तेरा साथ नहीं देना उन्होंने तेनू नंगा करके घरों बाहर कढ़ना है क्यों झूठे मान करदा है।

सारा जगत झूठा है, रचना सब विनसन वाली है। जिस तरह रेत की कंध खड़ी नहीं रह सकती, इसी तरह इस संसार

बंधन पै गए, कुछ भी उपाय नहीं हो रहा। ऐ परमेश्वर हुण तेरा ही आसरा है, मेरी रखिया कर, जिवें तंदुए तू गज हाथी दी तू रखिया।

धन पदार्थ ने किसी ने भी तेरा साथ नहीं देना। एक परमेश्वर का सिमरन है जिन्हें तेरी सहायता करनी। आ पाई उस गोबिंद दे गुण गा ताकि तेरा जिड़ा जन्म है।

तेनु मनुष्या देही प्राप्त होई। गुरु कल की तर पातशाह ने बख्शिश की थी, जेड़ा खाका गुरु नानक ने चितरिया, जिस खाके दे विच गुरु अंगद देव पातशाह ने भी रंग भरिया, गुरु अमरदास पातशाह ने भी सेवा का रंग भरिया, गुरु अर्जन देव पातशाह ने भी शहादत का रंग भरिया,

फ्रेम लगा के संपूर्ण कर दिता, सिख का रूप बनाया। प्या सिखा तेनू गुरु कलगीधर पातशाह ने सुंदर दस्तार भी बख्शिश की थी, सिखी दी शान बख्शिश की थी, जिथे पंजे कक्के धारण बख्शिश किते, रहनी बहनी विच रहन दी प्रेरणा कीती, उथे तेनू साबत सूरत दस्तार सिरा दस्तार सजाउन वास्ते भी है गुरु के सिखा। जदों दस्तार सजावेगा, दस्तार सजा के जदों तू शीशे दे सामने खलोता होवेगा, ते मेरे दीदार होवणगे। कितनी बख्शिश कीती, पर अज दा सिख उस मालिक नूं भी भुला बैठा, उहदे वचन भुला बैठा। इथों तक दस्तार दी जगह टोपी सिर ते पा बैठा, इथों तक कि उहदे वचन भुला के कन्न विच मुंदरां भी पाई फिरदा, ते फिर कहिंदा कि अज गुरु ने मेरी अरदास नहीं सुनी, गुरु ने मेरे कार्य रास नहीं कीते। ओ सिखा, तू गुरु वाल पिठ कर लवे ते गुरु तेरिया झोलियां भर दे, तू मुख कर गुरु वाल, गुरु का वचन का मन। जदों तू गुरु का वचन मनेगा, गुरु तेरिया झोलियां भर देवेगा, तेरे कोलों कुछ लपो के ना रखेगा। तू गुरु के वचन मन, गुरु के पाए पूर्णिया ते तुर दस्तार सजा। अफसोस अज का सिख भुलिया फिरदा, रब का राह छड़ के कुराए राह तुरिया होया। राव भाई अपने मन नूं समझाइए, मना आ मनुखा जन्म बार बार प्राप्त नहीं होता। यह समा मिले उस गुरु की बख्शिश हासिल कर, रहनी बहनी विच रहो, पंजा कक्कियां दा धारनी बन, सुंदर दस्तार सजा। जे सिख हो के टोपी पाउंदा तां फिर इत्थे बख्शिश, सिख होए सिर टोपी धरै, सात जन्म कुश्ती होए मरे, सात जन्म कोड़ी दा मिलदा जे सिख हो के भी टोपी पावे। सिख दा फर्ज अपने धर्म विच रहना, हिंदू है वो अपने धर्म विच रहे, गल विच जनेऊ पावे, मुसलमान है अपने धर्म विच रहे, पर सिख दा धर्म पंजा कक्कियां दा धारनी बन जाना, ते गुरु दी बख्शी सुंदर दस्तार नूं सजावे, सिखी स्वरूप पूर्ण धारण कर लवे। अज दा मुसलमान कहिंदा मैं सिख बन जावा, दास आ थोड़े दिन होए कुवैत की धरती ते जदों गए, कुछ दिन कीर्तन कीता, एक मुसलमान जिदे हिरदे विच भावना प्यार बड़ा, गुरु दे दर ते आउंदा, सेवा करदा, सिमरन करदा, कीर्तन सुनदा, निता परत नियम है। पर जदों दास वापस आउण लगे ते उस दे नेत्रां विचों जल वहण लग पिया, हथ जोड़े भाई साहब जी आप जा रहे हो, मेरे वास्ते एक अरदास कर जाओ। मैं उस मुसलमान वीर वल तकिया, ख्याल आया अज दा मनुख दुखी है, हो सकदा इस नूं भी कोई दुख होवे, इस वास्ते चाहुंदा कि गुरु दे चरणां विच अरदास कर जावे। पुछिया भलिया की दुख है, किस वास्ते कहीं ने अरदास करो, हथ जोड़े भाई साहब मैनु कोई दुख नहीं, मेरी एक इच्छा है कि मैं सिख सज जावा। भाई साहब आ तीन वार मैं केस रखे पर मैं सिख ना बन सके, मेरे केस कतल कर दिते गए क्योंकि मैं मुसलमान हां, कुवैत की धरती ते रहिंदा। पर इस वास्ते भाई साहब मैं तुहाडे चरणां विच एक अरदास करदा कि गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे चरणां विच अरदास करो,
कि आ जन्म तो बाद मेरा अगला जन्म सिखां दे घर होवे ते मैं सिख बन के गुरु कलगीधर पातशाह दा अमृत छक के पंजा कक्कियां दा धारनी बन के ते सिख हो जावां, फिर मेरा लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाएगा। मेरा दिल करता है कि एक बार अमृत छक लव। एक मुसलमान वीर की भावना है सिख बनन दी, अमृत छकन दी। ते अज दा सिख कदे झात मारीए, अज दा सिख नाइयां दी दुकानां ते बैठा है, वह चाहुंदा है कि मैं केस कतल करा लवां, केसां दी विद भी करदा है। अज तकीए मेरियां भैणां भी केसां दी विद भी करदियां। मैं उन्हां भैणां नूं भी बेनती करां, उन्हां वीरां नूं भी बेनती करां, आओ भाई जे तुहानूं सिखां दे घर जन्म मिलिया है ते इस विरसे नूं संभाल लईए, आओ भाई पूर्ण हो जाइए। जदों पूर्ण हो जावांगे, दस्तार सजावांगे, गुरु दी सिखी जो गुरु ने बख्शी है इस नूं गहना मन के हंडावांगे, ते फिर गुरु बख्शिश करेगा, झोलियां भर देवेगा। आओ फिर अपने मन नूं समझा लईए, ए मंजिल दूर बथेरी जो मिलदी ना हर वेरी। हर वारी तां ए मनुष्य जन्म नहीं प्राप्त होना, तैनूं ए दात प्राप्त होई ए ते हुण रहितां विच रह, बख्शिश हासिल कर, इस सिखी नूं गहना मन के हंडा। अज वे बीबियां गहना पाउंदियां किस वास्ते, अपने शरीर नूं सिंगार दियां, अपने पति नूं खुश करन वास्ते। ते आ भाई सिखा, तेरा भी पति ओ परमात्मा, तू भी उन्हूं खुश कर, अपने शरीर ते आ गहना पंजा कक्कियां दा धारनी बन, अपने गुरु नूं मना लै, अपने गुरु नूं खुश कर लै, ये बार बार दात प्राप्त नहीं होनी। ते आ फिर एक बार मन नूं समझा।

अगला सवाल कि ए भोजन नाम रस वाला किवें छकिया जांदा किवें पीता जांदा हुण भोजन भी मिल गया पता भी चल गया भोजन कित्थे है ए भी समझ आ गई भोजन बड़ा श्रेष्ठ पर छकिया किवें जांदा किवें पीता जांदा उहदी जुगत दसदे ने

इस भोजन नाल तुहानू कोई बीमारी नहीं आएगी, वकार खत्म हो जाएंगे। ते इस भोजन छकन वाले नू सतगुरु की कहंदे ने हुण, फिर की होएगा?

कोई रसना खाली ना रवे, पहला दास बोलेगा, दूसरी बार मेरे वीर, तीसरी बार मेरी भैन। दो ही पंक्तियां बोल के समाप्ति।

अगली जो पंक्ति है ना बहुत जरूरी है। एक गुरसिख के कर्तव्य लई है, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजय व्रत गोर मड़ी मट भूल न माने। आओ सारे पढ़िए जी।

जो हरी जस विच हरी दी कथा वार्ता विच वाहिगुरु दी याद विच गुजरदा है ओही लाभदायक है। ओही तेरे अंग संग होके तेरी सहायता करेगा। बाकी दा समा लेखे विच नहीं, क्योंकि गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरारथ दाम। जिस तरह किरपन मनुख सारी उम्र धन जोड़ जोड़ के मर जांदा है, उसका सुख नहीं मान सकता, इसे तरह ही अमोलक श्वासा रूपी धन जो मनुख नू मिले, जे भाई जपया नहीं, सिमरन नहीं कीता, सेवा नहीं कीती, हजूर कहिंदियां गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, तेरा संसार ते आया निष्फल हो जाएगा। इसलिए जितना भी समय सिमरन विच जप तप विच बतीत हुंदा है, समा ओ सफल है

लगे मर्दाने जदों कोई आदमी गोलक विच रुपया पांदा है ते खड़ाक ज्यादा हुंदा है ते जोगी राज अंदाजा लगा लैंदा है कि हुण किसी ने रुपया पाया रुपये तो घट पैसे पाए घट खड़ाक होया ते अंदाजा लगा लिया कि इन्ने क पैसे पाए ने मर्दाने है। इस जोगी राज ने अखा ता बंद कीतियां ने पर ए परमेश्वर नाल नहीं संदूखड़ी दे नाल जुड़िया होया ए ता अखा बंद करके पैसे दा हिसाब पिया लगांदा है कि संदूखड़ी विच किन्ने क पैसे जमा हो गए। मर्दाना कहन लगा महाराज ये किस तरह हो सकता है। साहब जी कहन लगे जे देखना है ते जेड़ी संदूखड़ी एदे सामने पई है चुक के एदे पिछे रख दे। मर्दाना उठे है उस जोगी राज दे सामने संदूखड़ी चुकी ओदे पिछे रख दिती अपनी जगह ते आके फिर बैठ गए। थोड़ी देर दे बाद उस जोगी राज ने अखां खोलियां बैठियां लोकां वाल देखिया ता ए गल कही ऐ संत जनो आज हम आप लोगों को तीनों लोकों की बातें सुनाएंगे। आज हम ब्रह्मपुरी में गए वहां वेदों की कथा हो रही थी फिर हम विष्णुपुरी में गए

कहन लगे जोगी राज तुसी की किया सानू समझ नहीं आई एक बारी फेर कहो अज तक किसे ने ए सवाल नहीं सी कीता। गुरु साहबा नू घूर के देखिया ते जोगी राज कहंदा ए बालके ये ज्ञान ध्यान की बातें हैं तुम नहीं जान सकते। गुरु साहब जी कहन लगे असी जान नहीं सके इसे वास्ते ता पूछिए। ते जोगी राज कहन लगा ए बालके मैं इन लोगों को तीनों लोगों की बातें बता रहा हूं तीनों लोकों में क्या हो रहा है मुझे तीनों लोकों की सोझी है कि इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है। तो गुरु साहब जी कहन लगे अच्छा चंगा फिर जोगी राज जरा ए दसो तिना लोकां दा ज्ञान तां तुहानू है तुहाडे सामने जड़ी माया वाली संदूकड़ी सी ओ किथे है। जोगी राज ने सामने देखिया ती संदूकड़ी कोई नहीं जिन्ने लोकी बैठे सन ओ सारे हस पए। ते गुरु साहब जी कहन लगे भाई तेरी संदूकड़ी किथे। ते जोगी राज कहंदा है गुरु साहबां नूं बताओ मेरी संदूकड़ी कहां है। ते गुरु साहब जी आस

गुरु साहबाने उस वक्त ए शब्द उचारिया, काल नाही जोग नाही नाही सत का डब, थान सट जग भ्रिष्ट होए डूबता इव जग। कोई जोग नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई सच नहीं, इस करके ए सारी दुनिया भ्रिष्ट हुंदी जा रही है, ए सारा संसार डुबदा जा रहा है। कल मैं राम नाम सार ए भाई पखंड छड़ दियो, कलयुग दे विच सिर्फ उस परमेश्वर दे नाम ने सहायता।

साहब जी कहन लगे भाई दुनिया नू कहना कि मैनू तिना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना है अखी ता मीटे नाक पकड़े अखा बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना है ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण वास्ते जद के तेनू ए पता नहीं तेरी संदूकड़ी किथे है ते गुरु साहब ने कहा जो अपनी बाणी विच बयान कीता है साहब जी उस जोगी राज नू

पाछे कछु ना सूझे। तेनु अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई हुई है। पिछा देखिया इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गया ते गुरु साहब ने कहा, भाई दुनिया नु क्यों धोखा देना है, अपने पिछे पई तेनु संदूकड़ी दा पता नहीं ते दुनिया नु कहना है।

एफआई 18 कुरान भी पढ़े, कुरान भी पढ़ी, वेदां दा अभ्यास भी कीता, पर बिन नाम हार के मुक्त नहीं कहे नानक दास। उस परमेश्वर दा नाम जदों तक तुसी मन करके नहीं जपोगे भाई तुहानू किसे नू भी मुक्ति नहीं प्राप्त होनी। ए गल नानक ने

भगत कबीर सावदा है। एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया, तीन कुटिया बनिया सन। उन्हां कुटिया दे कोल गया, एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण। ए बड़ा खुश होया क्योंकि नारायण परमेश्वर नु कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई, दामोदर। दामोदर भी भगवान दा एक नाम है। तीसरी कुटिया विचों आवाज आई, बिंद्रावन। ते बिंद्रावन कृष्ण भगवान जिस जगह खेडे, ए सेठ बड़ा खुश होया। उन्हां तिन्हां कुटियां दे विचों एक एक साधु बाहर निकलिया, जिन्हां चिट्टियां धोतियां बन्नियां ने, गलां विच माला, हाथ विच माला, ते एक हाथ विच चिट्टा लिशकदा होया लोटा फड़े। ए तुरदे तुरदे इस सेठ दे कोल आए ने। इस सेठ नू गली बाती जंगल विच लै गए ने। उथे जाके इन्हां तिन्हां साधुआं ने जो कुछ सेठ दे कोल सी ओ खोलिया। इस सेठ नू जानू मारन लगे ने, पर किसे तरह ए सेठ अपनी जान बचा के जंगल विचों भज निकलिया, ते कबीर साहब दे घर चला गया। एदे पाटे कपड़े देखे, ते कबीर साहब कहन लगे, भाई की गल है, तेरा बहुत बुरा हाल है, तेरे कपड़े पाटे नी। कहन लगा कबीर साहब, मैनू तीन साधुआं ने लुट लिया, मैं तां संत समझे, पर उन्हां ने मेरी सारी माया खो ली, मैनू जानू मार देण लगे सन, पर बड़ी मुश्किल अपनी जान बचा के मैं उत्थों भज्जिया। ते कबीर साहब कहन लगे, भाई ओ संत नहीं, पता है ओ कौन ने? कबीर साहब जी अपनी बाणी विच उन्हां बारे बयान करदे।

मैं ता मथा टेकिया कि ए ता पहुंची हुए संत ने। ते कबीर साहब कहन लगे भाई ए उन्हां दियां गुप्त बोलियां ने जिन्हें क्या नारायण उन्हें तेनू देख लिया ते उची सारी अपने साथियों नु क्या नारायण मतलब के कोई बंदा आया ओदी आवाज सुन के दूसरे ने क्या दामोदर के जेड़ा बंदा आ रहा है एद कोल माया भी चंगी लगती ते तीसरे ने क्या बिंदरा बन वो कहन लगा कोई नहीं आ जान दियो जंगल विच ले जा के इनू जानू मार के ते लुट लवांगे ते ओ सेठ कहन लगा कबीर साहब पर इना दा पहरावा एडा सोहना ते काम इन्ने माड़े ते कबीर साहब जी फिर अपनी बाणी विच इना लोकां बारे इवें बयान करदे।

गज साढ़े तै तै धोतियां, साढ़े तीन तीन गज दियां चिट्टियां धोतियां बनिया ने। तेरे पाए ने तग ते तेरे तेरे जनेऊ गल च पाए हुए ने।

गली जिना जप मालिया जिना ने गलां विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी पग ते हथां दे विच चिट्टे चमकदे होए लोटे फड़े होए ने।

के भांडे जेड़े ने चंगी तरह मांज मांज के चुल्ले ते रखदे ने। काठी कहंदे ने लकड़ा नूं, जेड़ियां लकड़ां जंगल विचों लियांदे ने, उन्हां लकड़ां नूं गंगा दे पानी नाल धो के फिर सका के बालदे ने। सुचता इन्नी रखदे ने

धरती वसुधा खोद करे दोए चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने, लकड़ा भी धो के बालदे ने, पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा जाण।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई धनी आदमी आया, गंगा दे पार जाना सी, बेड़ी दूसरे पासे सी, इस वास्ते इस पेखी संत दे कोल ए धनी आदमी बैठ गया। गल्लां बातां करदा रहा, बेड़ी आई, ओ तनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेखी संत ने अपना आसन चुकया, ओ माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव जी दूर बैठे सन, उन्होंने देख लिया ओ सेठ दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेखी संत नु पुछिया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वांसली

और भी दो चार आदमी इकट्ठे हो गए ते सारे भगत नामदेव नु कुटन लग पए। ओ जड़ा पेठी संत सी अपना वड़ा पाने दसन वास्ते अपने आसन तो उठे उन्हां लोकां नु कहन लगा नामदेव नु मारो ना जे इन्हें माया वाली थैली चुकी है ते आपे परमेश्वर इनू सजा देवेगा। इन्हें इन्नी गल कही उधर एक हवा दा बुला आया

उस पेखी संत दा आसन उड़िया ते थलों माया वाली वांसली नजर आ गई। उस सेठ ने ते लोका ने नामदेव नू छड़ दिता ते उस पेखी संत नू फड़ के कुटन लग

ए पाई काहे को कीजे ध्यान जपन जे तो आड़ा मन नहीं जुड़दा ते क्यों समाधियां ला ला के बेंदे हो।

तित्तर नू के तित्तर दा रंग बड़ा सोहना हुंदा है। सिंह च भोजन जो नर जाने, भगत नामदेव जी कहंदे ने कि जेड़े लोग जेड़े इंसान तित्तर दे बारे जानदे ने कि रंग बड़ा सोहना पर खांदा की ए कीड़े ते मकौड़े, ऐसे ही ठग दियो बखाने। इसी तरह इन्हां संतां नूं समझो जिन्हां ने चिट्टे चिट्टे ते लम्मे लम्मे चोले बनाए, हत्थां विच माला फड़ी ते कहंदे ने असीं घर बार छड्डे आ, असीं त्यागी, पर इन्हां संतां नूं उस तित्तर दी तरह समझो जिहड़ा सोहना ते बड़ा है पर खांदा कीड़े मकौड़े। इसे तरह ए संत चोले ता लम्मे लम्मे पाए ने चिट्टे रंग दे, पर अंदरों ए ठग ने उस तित्तर दी तरह

हर जियो निमाणिया तू मान। हे हरि वाहिगुरु, तू निमाणिया दा किवें मान है? पातशाह कहिंदे ने आड़ दम को छिपरो, अद्धी कौडी दा छिंबा होयो लखीना, लखां दा हो गया। पर किवें? भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने

कबीर गुरु धारण कर लें ते स्वामी रामानंद जी कहिंदे ने एक दिन उठे की वेखदे ने स्वामी रामानंद जी अमृत वेले उठ के गंगा इशनान जांदे ने कहिंदा क्यों ना ऐसा होवे कि मैं इन्हां तों पहले उठ पवां जे इन्हां कोलों कुछ लैणा ही कबीर इन्हां तों पहले उठ के जिस रस्ते जांदे ने उस रस्ते विच लम्मा पैगा हो सकदा है तेरे ते नजरे करम हो जाए कबीर बरसाती ओ सिंगड़ा जिहा रस्ता ओदे विच लम्मे पै ने स्वामी रामानंद जी पौया ते सवार अमृत वेला तुरे आउंदे हुण जिस वेले स्वामी रामानंद जी आए स्वामी रामानंद जी दे चरणां दी छोह होई हुण स्वामी रामानंद जी ने कहा पता नहीं कौन पे है इंज जापदा जिवें कोई मृतक शरीर है ते साध संगत चरणां दी छो लगन दी देरी सी अज अपने मुखो एक बचन किया उठ राम के लोका राम को बस इनी गल कहण दी देरी सी कबीर ने माला फड़ ली राम राम राम शुरू है ते साध संगत हुण भगती करदे आ जिस वेले उन्हां उच्चियां जातां वाले ने तकिया हुण मन च ख्याल आ गया कि कबीर दा गुरु केड़ा है कबीर नूं दिखिया किन्ने दिती है यह माला किवें फड़ के बह गया यह ते नाम नहीं जप सकदा क्योंकि उस वेले उन्हां पंडतां ब्राह्मणा ने यह उपदेश दे दिता कि उच्चियां जातां वाले ही नाम जप सकदे ने छोटी जात वाला नाम भी नहीं जप सकदा साध संगत हुण ध्यान देना पुछ कीती तेरा गुरु कौन है कहन लगा जी स्वामी रामानंद जदों स्वामी रामानंद जी का नाम लिया कहन लगे ए हो ही नहीं सकता ओ ते शूदर नूं मत्थे नहीं लांदे तेनू किवें दिखिया रिड़ती कहन लगा मेरे ते यकीन नहीं ते जाके स्वामी नूं पुछ स्वामी रामानंद जी पास आए कहन लगे स्वामी जी कबीर कदों शिष्य बनाया करो दिखिया दिती जे कहन लगे कबीर मेरा शिष्य नहीं है मैं दिखिया नहीं दिती कह लगे महाराज ते तुहाडा नाम जप रहे कह लगे बुलाओ कबीर नूं हुण कबीर नूं बुलाया ना जिस वेले स्वामी रामानंद जी ने एक पर्दा तान लिया एक पासे स्वामी रामानंद जी ने एक पासे कबीर है विच पर्दा है ते साध संगत मैं पर्दे दा जिक्र कर दिया पर्दा एक भरम है ख्याल करना पर्दा एक भरम है हुण वेखो यह भरम हटदा किवें कबीर कण तेनू दीखिया दिती कह लगे स्वामी जी अमृत वेला याद करो उस दिन का अमृत वेला याद करो जिस वेले अमृत वेले तुसी चरणा दी छो दे के मैनू अपने मुखो आख्या उठ राम के लोका राम को ए दीखिया नहीं तो और की है बोलो राम सिख समझाई तुसी राम इन्हां दे कन्नां विच कहिंदे हो मैनू उच्ची आवाज नाल तुसी के ते मैं राम दा नाम जपन लग पे कहते ने स्वामी रामानंद जी कह लगे पर्दा हटा दियो गिरा दियो इस पर्दे ओ भाई जिन्हां नूं मैं नाम दिता है ओ अज तक इस अवस्था विच नहीं पहुंच सके स्वामी रामानंद जी कहते ने कबीर नूं ते मैं अचनचेत राम दा नाम दिता है पर इहदे हिरदे विच इंज नाम वस गया है कहन लगे कबीर सब तो उच्चा हो गया है